0: ने बहुत ही रीजनेबल रेट फ्री एस्टिमेट ले कांटेक्ट करो नानक रेनोवेशन 416-902-9293 नानक रेनोवेशन थोड़े रेनोवेशन दे सुपने अनु पूरा करनगे। किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप दा नाम एक है वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप पला अते करण शर्मा नु कॉल करो। नंबर वन सर्विस नंबर वन रेट्स प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 ते कॉल करो। कोई भी कार वैन ट्रक का काम हो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियों लेके जाना रिपेयर के लिए रॉयल ऑटो सेंटर। टेस्ला के व्हीकल्स से भी काम करते हैं कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट की सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर।
1: यार कमाल है होगा नहीं तू
2: दो मिनट बस
3: तू जा
1: इधर गाहक चढ़े पे सामने
2: कोई नहीं लिया मुंडिया

0: 905-673-3339। अच्छा काम की गल तो रही गई, मैं यही पूछना सी कि जड़ियाँ चाप सा भाजी माफ करना मोमोज आ, ये तो हर ग्रॉसरी स्टोर तो अजकल फ्रोजन मिली जाने, सो थोड़िया मोमोज के की खास गल आ, थोड़ी मोमोज क्यों खाण जन तुम क्या वैजीटेरियन आ मन गए, पर मोमो तो अजकल तुम किसी भी ग्रॉसरी स्टोर के फ्रिजर ज हाथ मारो वो थैले भरे पे आ, अपनी मोमोज की खास गल आ।
1: देखो जी तुहानू जिदा पता है कि 90% जिहड़े रेस्टोरेंट्स ने ओह तुहानू फ्रोजन मोमोज खवा रहे हैं
0: जी,
1: और मजे की गल है 90% दे विचों अराउंड 80% इंडिया तो आ रहे हैं
0: जी,
1: जिन्हां नू आन च 3 महीने लगते ने ते बढ़न च ते वेचन च किन्ने पुराने तुहानू दे रहे ने नो वन नोस।
0: बिल्कुल
1: साडे बढ़नगे जी फ्रैश, सवेरे बढ़नगे शामे वेकणगे, इन्ने फ्रैश कि फ्रिज च भी रखण दा मौका नहीं मिलता, ते जे फ्रैश चीज खाओगे तां ही अजमा ठीक रहेगा, नहीं तां तुहानू पता है फ्रोजन ते दुनिया दा की हाल है। ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਮਾਓ $7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਵਾਓ ਈਟਸ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 905-670-0090 ਵਾਓ ਈਟਸ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ $10 ਆ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਣ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਣ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 905-673-3339 9056733337।

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Punjab te Amir Virse di Pukkal chon yaadan te santuhi safar da hum safar sancha virsa
2: geet sangeet desh duniya diyan taaza tareen jankariyan naal labrez mehkan di saugaat vandda sancha virsa
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251
1: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026
2: सावन चढ़िया
1: टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो
2: दुनिया मेले जानती
1: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो

0: बड़े गाने गाए जा रहे ने सुनियो, किथे अंबरा ते घर पा लिया, साडे नाल ते गल करन दा वी टाइम नहीं।
1: हां टाइम ते अजकल नवी सिद्धू दे शो दे नाल बीत रिया, बल्ले बल्ले हो जांदी है।
0: ओ यस, नवी सिद्धू शो दा ता मैं वी फैन हां।
1: बस सुबह शाम ए 530 रेडियो दी शान ते पंजाबियां दा मान, मेल फीमेल बच्चे बुड्ढे दी जुबान ते इको ही नाम, ट्यून इन नवी सिद्धू शो।
0: जी हां, इंफॉर्मेशन ते एंटरटेनमेंट अते बिजनेस दी एडवर्टाइजमेंट दी डबल डोज।
1: पंजाबी लहरा नवी सिद्धू शो,
0: इंस्टाग्राम पंजाबी लहरा, कॉल 6475041557 6475041557 और विजिट punjabilehra.com।
2: आस दी किरण, रे ऑफ होप, नशा छुड़ाऊ ते पुनर्वास केंद्र दयालपुरा कपूरथला। नशे दी एडिक्शन एक मानसिक बीमारी है, इस दा इलाज जल्द ते सौखा हो सकदा है। आस दी किरण दा मनोरथ है कि नशे दी एडिक्शन करन वाले व्यक्ति अते परिवार नू इस मानसिक बीमारी तो छुटकारा दवाउणा। आधुनिक सहूलतां नाल लैस नशा छुड़ाऊ केंद्र आस दी किरण भारत सरकार वालों मंजूर शुदा है। तुहाडे परिवार दा कोई व्यक्ति या दोस्त नशे दी एडिक्शन विच है तां जल्द इलाज लई 99-151-54-548 लखबीर सिंह संधू MD नूं कॉल करो 9915154548।
3: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
4: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
4: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
5: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
4: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
5: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
4: 416-509-1509
5: और विजिट insuranceforyou.ca।
2: हर तरह दी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड।
6: Reason. This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
7: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
8: Navigator's
7: Spirit, samosa chaat and bhel.
8: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
9: ਸੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ?
10: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਹੈ,
11: ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦੀ ਫਸਲ ਸੱਚ ਹੈ,
10: ਖੁਰੋ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ।

सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत ते चढ़दी कला वाली सवेर दे विच खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:05 हो चुके हैं। थोड़ा साड़ा साथ होने तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

परम पुष्प परमेश्वर के नामों का सुना जिसने नाम उठ आश्रय ना आगाज दुनिया दी रक्षा दे। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपाऊ निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। तो एक बार फिर तो पॉजिटिविटी का दूसरा नाम रेडियो वास, चढ़दी कला का दूसरा नाम रेडियो वास में मैं शामिल अमनदीप सिंह बनीपाल। ट्रैक 6 के उत्ते जिथे इमरेट की फ्लाइट जी है बाय बाय कर लगे धरती को, कि धरती को छड़ के रिस्क लैन लगे। जे मैं थोड़ी सिंपल भाषा च कहाँ, जिवें तुसी सारे मैं मिलते हो, थोड़ी सिंपल भाषा च मेरे ऑफिस के उपरों ही हूँ नंगूगी भजन लगी है, उपर नोड़न लगी है। यानी कि धरती ते खड़ी सी फ्लाइट, यदि कोई कदर नहीं सी, पर जो हवा चुड़ूगी यदि कदर उदों पैनी हैगी है, उदों ही इन्हें रिस्क लेना है। तो रिस्क भावें कुछ परसेंट हों पर समझदारी ना, यानी कि पूरी टैक्नीक दे नाल किद्दां उड़ना, किद्दां उतरना, कित्थे किवें एयर दा जिहड़ा हैगा स्पेस किहड़ा होगा, हाइट किन्नी होगी, तो स्पीड किन्नी, सारा कुछ इहदे विच इनवॉल्व है। नहीं कि उइयों उड़न लग गई बस तो थले डिगी, लाई बेकदराना यारी टुट गई तड़क करके, वाला कम नहीं है। तो दूसरे पास यह है कि समुद्री बेड़े खड़े ने खूंजे ते लगे तो बड़े शांत जे नज़र आते हैं, पर अशांत समुद्र दियाँ लहरों चीरते हुए लंघते ने विचों, ते लंघ के पड़ा तक पहुँचते हैं। थोड़ा सौरा माल पानी जो खाने पीने सब चक चक लिया ने समुद्री बेड़े। सानू लगता कि पानी च बड़ा डर लगता, सानू बड़ा लगता कि हवा च बड़ा डर लगता, पर यह रिस्क नूं कढ़दे ने ते तां ही इन्हां दी वैल्यू बनती हैगी है। जिंदगी कुछ इसे तरह की है कि तुसी कुछ पाउणा है ते कुछ गवाउण लई जरूर तैयार हो, पर साडी आदत है कि असी प्रॉफिट लई बिजनेस करदे हां, जे लॉस हो जाए तो असी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, असी शिकायतां करन लग जाने, किसी का कसूर लभण लग जाने, किसी ते इल्जाम थोपण की कोशिश करते हैं। पर मैं देखिया कि कम दिलिया नूं दिल ना परिया नूं पर दई, या खुदा सब बेकरियां नूं कर दई, हर सुहागण दा जिंदा रहे सुहाग, उम्र बीती जा रही नूं वर दई, बेड़िया ते झांजरां चों स्वरे मुक्त कैदी कस्बियां नूं कर दई, सारियां मुल्कां नूं बख्शी अमन तूं मुद्र ते खाक चेहरे रोशन कर दई। डॉक्टर जगतार जिथे कहिंदे ने कि बेड़ियां ते झांजरां चों इस बरे मुक्त कैदी कस्बियां नूं कर दई। सो मुक्त कैदी कस्बे की है, साडा मानसिकता, साडा मन, जिथे सानूं लगदा कि मैनूं सब कुछ पता है ते मैं इह करूँगा। अज इंटरनेट दा जमाना पीक दे उत्ते चलदा पिया, मेरी सोच है कि इस तों बाद हुण कुछ नवां आऊगा, ये खत्म हो जूगा, क्योंकि हरेक आदमी जज बनया होया, तो हरेक आदमी वकील बनया होया, हर आदमी खड़ा किसी प्रधानमंत्री क्वेश्चन कर रहा है, तो हर बेरोज़गार खड़ा इंस्टीट्यूट्स नूं गालां कढ़ रहा जिथे उन्हें काम करना जां कीता हैगा उन्हूं गालां कढ़ रहा हैगा। सो ये सब कुछ चल रहा दुनिया दे विच, ते इहदे विच मानसिक बुद्धि जिहड़ी है जिहदे नाल आपां कहिंदे ना हे सच्चे पातशाह जिहड़ा हैगा मन नीवा मत उची कर राखा आप वाहिगुरु, अरदास च असीं कहिंदे आ मन नीवा मत उची कर राखा आप वाहिगुरु। बहुतात आपां अरदास ही भुल गए हैगे किवें आ, सानू काली हुंदी आ, हिल रहे हुंदे आ खड़े कि कदों खत्म होऊ, कदों फिनिश होऊ। जदों तुसीं एक एक शब्द चक हे प्यारे सतगुर सच्चे पातशाह सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे, जो तेरे नाम की गल कर, तेरी महिमा की गल कर, जो तेरी ओट की गल कर, तेरे आसरे की गल कर, तेरा तेरा तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के। सो जिथे इस ओट की गल चलती है, उस महिमा की गल चलती है, उस सतगुर सच्चे पातशाह अगे असी अरदास करते हैं कि सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। यानी कि वो लड़ लगे होण किसे पासे, वो किते आवारा गऊं जिहड़ियां सड़कां ते घूम रहीआं ने उन्हां वर्गे ना होण, ते जिहड़ियां गऊं कीलियां ते बन्नियां होईआं ने तेरा तेरा तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जाण के। वो गऊं दा मुल पैंदा मंडियां दे विच, लोग मंगदे ने लखां लखां करोड़ां रुपया दे के उन्हां नूं मंगदे ने, ते जिहड़ियां सड़कां ते तुरियां फिरदियां उन्हां ते डंडे पैंदे ने। इसलिए कहिंदे सही प्यारे मेल ते जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। रिवाज में मैं अमनदीप सिंह बनीपाल एक बार फिर तो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हुए चलते हैं जी खूबसूरत जी सवेर के वाल, जिस विच असी तुसी और CHLO M530 डायल है डिजिटल फ्रीकुएंसी राही इस समय पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक तुसी सानू सुन रहे हो, और तुसी सानू ज्वाइन करना यानी कि अपने इस प्रोग्राम नू ज्वाइन करना, जिस राही तुसी एक मिनट के विच तकरीबन 80,000 तो 1,25,000 बंदे तक पहुँच जाने हो। ये यूट्यूब दे व्यू नहीं है, इंस्टाग्राम दे लाइक्स नहीं है कि लाइक आए हुए ने 20, शेयर होए ने 5,000। मैं एक एजुकेशन थोनू देनी चाहना, मेरे को एक नंबर आ, कोई भी बंदा टोरंटो दे विचों
ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਨ ਏਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਲੋਅਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਸਟਾਰ ਜੇ ਦਲ ਜੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੂਗਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ, ਬਠਿੰਡੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ M530 ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਮਚਿਓਰ ਕਲਾਇੰਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੰਚਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਚਿਓਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਸੀਅਰ। ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ 416-518-3200 416-518-3200 416-518-3200।

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर वर्कर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्क ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
2: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
4: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
3: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808
5: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
6: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
7: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
5: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
6: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
7: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
8: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे साड़े अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड दे मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विद शाबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: आज खुश तो बात हो गई था
2: ओ ता होना ही है जदों ढिल्लो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तैं नक्ता बनदा ही है।
3: हां मेरे पास बिल्ड है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। और दस क्या चाहिए था?
4: क्यों क्या रहे
2: पर? ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आजो एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। और कोई सेवा
6: मित्रां दे जंक्शन ते
7: हो केड़े जंक्शन ते
8: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
6: रात लगियां महफलां रे
8: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040 647-429-4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
9: कनेडा विच 75+ लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डिपो लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो। 50+ टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा। ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा।
10: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो।
9: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज, शाही पनीर फ्राइज, मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल। अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepo.ca ते ऑर्डर करो।
10: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी एट pizzadepo.ca ते आज ही अप्लाई करो। पिज़्ज़ा डिपो, स्वाद के साथ टॉपिंग्स नॉनस्टॉप।
11: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
12: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
11: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
12: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
13: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
12: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
13: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
12: 416-509-1509
13: और विजिट insuranceforyou.ca।
14: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
15: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864
14: 905-358-0864 ढाबा ऑन द फॉल्स।
16: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells.

0: वाले रेडी हो जाओ, बाय योर टिकट्स एट ticketmaster.ca और कॉल 6479648573।
1: हेलो एम 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है। ते नाल तुसी दुपहरे सिरडे 1 to लैके शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार की एडवरटाइज करने हो अफोर्डेबल पैकेज लई आज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो एम

0: सिटी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तो पहला एक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स। डेस्टिनेशन बेडिंग करनी है, शिप क्रूज ले जाना है, या फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, ता कोमल ट्रैवल। इंडिया पंजाब ले डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वाले नु 905-238-7011 905-239-7711। कोमल ट्रैवल एंड टूर्स हाड़ियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है। सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफिंग दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम हो वे, आज ही अपने कार नूं लेके आओ हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल। आज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नूं 905-857-75-96 905-857-7596 ANJ ऑटो रिपेयर, जिहड़े कि बोल्टन अते ब्रैम्पटन दे बॉर्डर ते ने।

वाह अभी वाह, फ्राइडे जूनियर है, वीकेंड आ गया आ गया आ गया आ गया, हुण सीगा हुण वीकेंड इस प्रोग्राम च करदे आ थोड़े नाल गल्लां बातां ते लाउने आ रौनक गीत संगीत सुनाउने आ पूरा एन टॉप ऑफ द लाइन सारे गाने वधिया ने। देखो यार मैं कल भी आई थिंक गल कर रहा सी कि हरेक दा टेस्ट डिफरेंट है, हरेक दा ना हरेक दी प्रेफरेंस जिहड़ी है वो इक्को जिही नहीं हुंदी। कोई गजलां सुन के खुश है, कोई कवालियां सुन के खुश है, कोई डिफरेंट जे कह लो डिस्को टाइप गाने सुन के खुश है, किसी नूं सैड चाहिए, किसी नूं भंगड़े वाले चाहिए, किसी नूं चाहिए थोड़े चक में जे भी मैं चक दूं मार दूं, चलो ठीक है वो भी यार जदों गाहक हैगे उदां दे सुनने वाले हैगे तां बंदा क्यों नहीं करूगा। पता नहीं किहड़ा गायक है किसी ने कहा सी कि मैं इदां दा गाना कीता किसी ने सुनिया नहीं, मैं फिर चक लो धर लो करता तां उहदे पता नहीं किन्ने व्यूज आ गए, शो बुक होण लग गए। एंड ऑफ द डे हरेक बंदे ने रोटी तो खानी आ, अपने परिवार को पालना तो हैगा ही है। सो जो तुसीं लाइक करते सुना करो, जे कोई चीज़ नहीं लाइक करते ना सुनो, बट किसी चीज़ नूं बुरा कहना माड़ा कहना आई थिंक वो अपना काम नहीं। हरेक कोल फ्रीडम है जिदा का गाना वह चाहते हैं कि रिलीज़ करना करन, बट जरूरी नहीं भी आपको सुनना ही पैना। सो प्रोग्राम पंजाबी अभी थोड़े वधिया जी गाने लावे कुछ एंड थोड़ी कुछ एक फरमाइशा होंगी कुछ साड़ियाँ होंगे ने। सानू प्रोग्राम शुरू होने तो पहला ही इंस्टाग्राम से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि यार आ गाना ला दो या वो ला दो। सो सुनते हैं तो इंजॉय करते हैं तो प्रोग्राम पंजाबी लैके थोड़े लिए असी हाजिर हाँ।